0: की कोचो? कैसा बांगाली है तू? इतना फिश खाता है फिर भी अकुल नहीं है।
1: तो क्या करूँ?
0: जूता खोल के धक्का मारो, नहीं तो जीवन भर फिसलता ही रहेगा।

कभी कभी सोचता हूँ कहीं और पनपने के लिए चली जाती हैं, उनका अपना घर पराया हो जाता है और वे पराए घर की मालकिनें बन जाती हैं। नन्ही नन्ही कलियाँ देखते ही देखते एक दिन जगत जननियाँ बन जाती हैं। अपनी लाडली को नाजों से पालना, आशीर्वादों से सींचना और एक दिन ब्याह कर विदा कर देना।